याद है तो बाप हूँ तेरा मगर तुझको खिला सकता नहीं, दोनों हाथों से कभी

0: आम आम है मीठा इमली खट्टी किसका ज्यादा नाम।
1: अरे बस से बनती बुलबुल और कस से बनता कौवा, बुलबुल गए कौवा।

0: खाते बनता शेर और बातें बनती बकरी, शेर के आगे बकरी में मैं किसका ज्यादा नाम।
1: मस्ते बने मजा

0: दो दो दुनी चार,
1: अब तो हमको है तुमसे प्यार,
0: दो दिए थे दो चौके आज,
1: कर लो याद तुम प्रेम का पाठ,
0: दो पंज दस दो छक्के बारह,
1: चमक चमक तकदीर का तारा,
0: दो छक्के चौदह और दो छक्के सोलह,
1: मैं हूँ आज और तू है सोलह,
0: सोलह।

0: रे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

चूहों ने मेंढक बैंड बजाते हैं, वर्दी पहनी चूहों ने मेंढक बैंड बजाते हैं, तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं, हर

नन्हे चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए नन्हे चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में फिर किसी को पकड़ा जकड़ा किसी को पल भर में चली ये फौज हमारी रे चल चलम चल चलम चल छिड़ी लड़ाई भारी रे चल चलम चल चलम चल।

मुकेश जी और आशा भोसले से। फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं और एक बार फिर आशा जी हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में, इस बार शमशाद बेगम के साथ।

कजरा मोहब्बत वाला फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर ujala.nl। और सुनने वालों एक और पुराना गीत अश्नी माता दिन की आवाज में है।

पूरा तौर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

मुंड संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

वो चांद जैसी लड़की। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुनी और फिल्म देवदास से निकाला हुआ। उजाला रेडियो पर अब लता जी। हाँ, लता जी के साथ श्री कुमार को आप सुनेंगे।

जिया जले, जिया जले रात भर धुआं चले। लता जी की आवाज साथ में एम जी श्री कुमार, फिल्म का नाम दिल से, और जावेद अली की आवाज में गीत सुनिए।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

जाने ना तू अली खान। हाँ, अली खान की आवाज में आप सुने और ये उजाला रेडियो है। इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा उजाला.nl।

जाना, जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, जाना तुम नहीं जाना। एंड उजाला रेडियो से दूर भी कभी नहीं जाना।

मुकेश जी की आवाज़ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज़ की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भरा आदमी गा रहा है, और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

ये है मुंबई मेरी जान, हिलके गाना हिलके फील गुड धमाका गाना ऑन द वन एंड ओनली उज्जला रेडियो। या इट इज मेरा और आपका साथ उज्जला रेडियो, अमित जयराम के साथ में हिलके गवारियत गाना, न्यू बॉलीवुड सॉन्ग्स, हिलके धमाका फ्लेवर्स एंड नेचुरली ook een beetje romantische gana. So doen we dat. Uit de film Bhangra Pale uit het jaar 2019 is dit Hoja Rangila.

बंधु तू मेरा मेरा है तुझसे दिल का वास्ता, ब्यूटीफुल सॉन्ग और आवाज रहा यसर देसाई। एक से एक मोई मोई गाना, एक से एक हंगामा गाना और एक से एक फील गुड गाना। आवाज है कृष्णा अभिषेक और गाना का नाम है ओ पुष्पा, ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स।

एक धमाका गाना और गाना का नाम है मोनालिसा द 100 बक्स द स्टेफन टॉक सीन सामने में दुष्यंत प्रताप सिंह उजाला रेडियो है हिट गानों का मेघा हिट के साथ और इस बार एक धमाका गाना

कभी दूर दूर कभी पांच पांच कभी दूर पांच के बीच बीच में, या फिल्म का नाम है जब हैरी मेट सेजल, या यही तक aan break सुना है. एंड we genieten van de heerlijke Ghana hier op Ujala Radio vandaag op deze prachtige heerlijke mooie dag. दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो और वो भी अमित जयराम के साथ. जहां भी आप वाच ओगा ना डूम बेंट, ik zou zeggen geniet van deze prachtige mooie dag en geniet van de heerlijke Ghana hier op jouw favoriete radio Ujala Radio. फिल्म का नाम है भंगरा पाले और आवाज ऑन द वोकल्स सशवत सिंह. देश खूबसूरत है लेकिन धमाका गाना, और गाने का नाम है हो जा रंगीला रे.

फिल्म का नाम है खानदाना खानदानी शफकाना और गाना का नाम है शहर की लड़की द सिम्फोन बादशाह तुलसी कुमार इन दिस हिट गाना। We gaan weer eventjes terug in de tijd naar de film Kris. Oud Sunao, ik Pjarki, ik Kahani. Het is de stem van Sonu Nigam samen met Shreya Ghoshal in deze lovely, heerlijke rom.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

7:10 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, दिस इज यू आर और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज 26 तारीख सितंबर है मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी साल 2026। आज आखिरी शनिवार है इस महीने का और कुछ दिन और बाकी है, फिर ये सितंबर महीना भी हिस्ट्री में गिना जाएगा। मार मेरे प्यारे सुनने वालों, वीकेंड है और सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। बहुत खूबसूरत दिन आज गुजरे हैं और रात भी बहुत ही खूबसूरत और हसीन है। आप सभी ने चून किए हुए उजाला रेडियो के साथ बेहद खुशी है हम, तो जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है और जहां जहां पर भी आप चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। सैटरडे नाइट फीवर मेरे प्यारे सुनने वालों, फिर एक बार आपका दिल हम बहलाएंगे विद द फाइनेस्ट लोकल्स, और वो भी रात्रि में 12 बजे तक 5 घंटे लगातार आपका सेवा हम करेंगे ये प्रोग्राम लेकर, और वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से, जहां से ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मैं हिल फिल खसे लगाई मैं देखता हूँ कुछ नासी भी है यहाँ, बामी भी है, वत फ्लीस वार बेतरबाल भी है, कुछ सूर भी मैं मुझे दिखा रहे रोड का बोले है बिरंबी और प्याज। आहा, काफी मजा आएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप भी एंजॉय कर रहे होंगे अपना शनिवार, अपना वीकेंड। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों 8 बजे नाद क्लॉक फन अख्तूर कमर्शियल ब्रेक के बाद सभी एपर्स के नाम जो कश उठाएंगे स्टूडियो में ऐप करने के लिए, उन सभी के नाम से गीत हम चलाना शुरू करेंगे। En je mag dus vanaf nu al gaan appen naar de studio om hi hallo te zeggen. 020-363-0808. 020-363-0808. Aur hai aapke kamkaaj ke liye mere pyare suno wale, aapke farmaish se zaruri khabrein, maut ki khabrein, jo bhi jankari information aap prapt karna chahoge to aap Ujala Radio ko contact kar sakte hain tar ke zariye, mail ke zariye। अगर आप तार करना चाहोगे तो ये मुमकिन है सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक, और वो भी तार का नंबर जो दिया गया है 020-409-0807 लेकिन जैसे मैंने कहा, किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े, आप मेल कर सकते हो info@ujala.nl पर। मेरे प्यारे सुनो, आज का ये पहला जो घंटे है हम बहुत बहुत खूबसूरत नगमाएं लाए हैं, तो आने वाले घंटों में आपका दिल बहलाएंगे जरूर। लेकिन पहला घंटा जो है खाव अली मार बीच लेकर मोय त्रिनी पॉप्स लॉयस्टर जो हम समेत करके लाए हैं, एंड मिस्टर सैन फन दिस यार 2026। तो आप भरपूर एंजॉय करें मेरे प्यारे सुनने वालों, आपका व्हाट्सएप का इंतजार में है, और जिस तरह से व्हाट्सएप आएंगे आपको तो मालूम है, उसी हिसाब से भी लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे 8 बजे के बाद। मवखाने इवल लेकर ना डेयर्स पहला जो गीत हमने तैयार करके रखा है, शशि और क्लाइमेक्स मिलकर गीत गाएंगे हियर ऑन यू आर।

या या या अत मस हैव बीन लव और चांदी जैसा रंग है तेरा। क्लाइमेक्स और शशि की आवाजें हीरो निवार मेरे प्यारे सुनो लो। 19 मिनट गुजर चुके हैं 7:00, ये आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है। शनिवार है मेरे प्यारे सुनो लो, सैटरडे नाइट फीवर फिर एक बार सेवा में पेश कर रहा हूँ एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और द लोकल्स आप तक पेश कर रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा आज का ये पहला घंटा में कुछ त्रिनी पॉप आप तक हम पेश करने वाले हैं। सभी इसी साल का रिलीज हुए नगमाएं हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी आनंद लेंगे संगीत के साथ तमाम लोकल्स के साथ। फिर एक बार आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। एक गीत के अंदर अंदर में कुछ लोगों ने ऐप किए हैं आपके लिए, जरूर से जरूर हम गीत चलाएंगे 8:00 के बाद। और आप ही चाहते हैं तन मुझे वेलखन अपना 020-363-9000 मेरे प्यारे से नोलो। लेट्स एंजॉय दिस लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। विराम ये क्या हुआ

यस यस यस मिस्टर वीराम, मेरे प्यारे सुनो वालों, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ? ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, लेकर बीट में इन्होंने ये गीत को फिर से सजाए हैं, बनाए हैं अपने ही रंग और ढंग में, और आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। 03 3 9 0 0 9 0 0 जहां पर आपको ऐप करना है, और आपको मालूम रहे लोकल्स हम चला रहे हैं, खीन ओरिजिनल सॉन्ग्स, नगमाएं जो ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड के नगमाएं हैं, फिल्मी सॉन्ग्स हैं जो फिर से लोगों ने अपनी आवाज में अपने ही रंग और ढंग में सजाए हैं, बनाए हैं, और आप तक ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर में हमेशा पेश किया करते हैं। और चॉइसेस आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप एक चलता नगमा चाहते हैं या रुस्तखान सोल, और बाकी इंफॉर्मेशन देने या मुनासिब नहीं होंगे क्योंकि आपका फरमाइश हम पूरा नहीं कर पाएंगे। रिच सैनल सेलेक्टेड, और उसी सिलेक्शन से गीत हम निकालेंगे, और आज के सिलेक्शन में कुछ लगभग 350 नगमाएं हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और काफी पुराने भी हैं जो हमें ले चलेंगे वे बैक लेकिन बहुत खूबसूरत है, वो भी हम चलाएंगे। मार्स वॉल्स बलोव मेरे प्यारे सुनने वालों, ट्रीनी पॉप पहला घंटा में, तो विजय जगदीन की आवाज में पेश करता हूं ये नगमा।

0: back.
1: Ya beautiful mere pyare sunol ye tha Vijay Jagdeep musu musu hazi you malaila asik mani farkhis kumar sanu ka ek nagma and the film josh american natulo ko forget mere pyare sunol har ek information jankari ke liye www.ujala.nl aur उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं मेरे प्यारे सुनने वालों आप खुश हैं चाहे आप अकेले में हो या दोस्तों हित प्रेमियों के साथ आज अपना वीकेंड मना रहे हो शनिवार को बहुत सारे लोग छुट्टी से हैं और छुट्टियों में सुबह के दिन अपना सामान खरीदने जा रहे हैं दोपहर को पका रहे हैं कुछ चटक मटक और रात्रि को एंजॉय करते हैं फरियारी भी होते हैं कहीं फीस वीस भी जाना पड़ता है लेकिन जिस तरह से भी आप सुन रहे हूं तहे दिल से स्वागत है आप सभी का 020-363-0008 जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से भी मैं एक लोकल चलाऊं पसंद मेरे होंगे लेकिन आप हाँ ये जरूर मुझसे कह सकते हैं कि आप एक चलता नगमा चाहते हैं या एक कृष्ण खनुमान सो ठीक है रिकी राम और क्लासी पेश करता हूँ हियर ऑन यू आर
2: वेल नो इट्स द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन फॉर द नेशंस ऑल स्टेशंस ट्यून इन

Ja, Tina Lagi mirip ya di sini malu. And that was Rick Ram or Classy. आपको मालूम रहे मेरे प्यारे सुनो कि एपर्स इतने हो गए हैं कि 8 बजे हम शुरू करेंगे आप सभी के लिए गीत चलाने. तो पहला घंटा फन आख्तोतनीख इस अल्फोल आप अप एप करेंगे स्टूडियो में 023 पर, तो आपका गीत ब्लॉक 9 तो 3 में हम चलाएंगे, जो ब्लॉक होंगे 9 बजे से 10 बजे तक, उसी में आपका गीत हम चलाएंगे. ठीक है, तो आपको मालूम रहे एक न्यू ऐप जो स्टन मुटे को लंबे छ वक्त त्रिनी पॉप यानी कि गयाना वेस्ट इंडीज त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और उसमें भी हम जोड़ लेते हैं अंबीच अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में, मायमी, फ्लोरिडा वहां टेंपा, और नतुल कनाडा में भी कुछ हमारे भाई बहनों रहते हैं जो खूबसूरत नगमाएं बनाते हैं. उन सभी को हम इस पहले घंटे में उनका गाया हुआ गीत जो मेरे पास आज है, एंड दैट्स इन अवेलेबल, एक छोटा सा झलक आपको हम सुनाते हैं. जैसे कविता सुखूजी हमको आवाज दे गाकर सुनाएंगे, इसी तरह से

कवि तासु कुमेरे प्यारे से नालो हमको आवाज दे और ट्रिन पॉप की मैं देखता हूँ प्रिंस नवीन प्रभु आपकी बार हिस्सा लेंगे।

0: Prince with Studios.
1: प्रिंस नवीन प्रभु मेरे प्यारे सुनने वालों, कि तुम आ गए हो और नूर आ गया है। वखान नाड़ खिलावन, वो भी आरती सुखाए खिलावन, पूछो ना यार क्या हुआ। रिमेंबर दिस इज यू आर सैटरडे नाइट फीवर विद रतन, एंजॉय।

0: से
1: आरती सुखाएंगे खिलावन मेरे प्यारे सुन वालों। हेल कटरीन पॉप आप तक हम पेश कर रहे हैं और अभी हम चलेंगे द जिमिनी बैंड की ओर छम छम छमके जो गीत का बोल है। लेकिन गीत चलाने से पहले मेरे प्यारे सुन वालों आपको मालूम हो कि आप अभी तक ऐप कर सकते हैं 0 3 3 9 0 0 स्टूडियो में सीधे आपका व्हाट्सएप आएंगे और जो लोग ये कश उठाएंगे उन्हें मालूम है ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर के दौरान आप के लिए हमारी ही प्लेलिस्ट का एक नगमा निकाल कर आपके नाम से हम चलाने वाले हैं। मदद खबर ताली मार जब तू ऐप करिए तब तू ना ऐप करिए टगनवा हम चला बे सोई सो मातो तोड़ नाम ना लिया जाएगा तू जाने तो सोनना है एंड मेंस एंजॉय योर वीकेंड। बहुत सारे लोग हफ्ते भर काम करते हैं बस ये शनिवार और रविवार दो दिन हैं जो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारे लोग जैसे कि मैं यादन है पिसोंदा आफंत अलीन रुस्मो मेंजी वांट एक दिन कमती पड़े हैं हफ्ता में ऐसे बतिया है जिमिनी बहन मेरे प्यारे सुनने वालों एंड ब्लाइव मार ऐप अप 0 3 3 6 3 9 0 0 आपको मालूम रहे कि अगर आप ऐप करेंगे तो आपका गीत हम चला पाएंगे अश न्यू खत ऐप टू सुनी है 3 यूर

द जिबिनी बैंड मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं शिवाजी की आवाज में। और इस गीत के बाद 8 बजे के ब्रेक होंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम मिलेंगे और एपर्स के नाम गीत चलाना हम शुरू करेंगे।

Ja, beautiful, Mary Pérez en hallo. Welcome back, welcome back. Yeta, the sweet melodies forever. 12 minuten guzar chuke hain, Mary Pérez en hallo, 8 bajkar. 12 minuten over 8 ho chala hai. Weekend se shanivar hai. Sabhi enjoy kar rahe hain. Appers jo app kar rahe hain, kehte hain ki kaafi enjoy kar rahe hain. नगमाओं के साथ हमेशा शनिवार जब भी रतन होते हैं तो एंजॉय करते हैं. दिल खुश हो गया. बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद. वादा के मुताबिक मेरे प्यारे सुनो, यहां से हम देखेंगे कि कौन है जो मुझे ऐप किया है स्टूडियो में. ऑफ 02 3 9 9 9 उन सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे. और जिस हिसाब से आपने कहा कि अनरुस्त हो ऑफन स्नेल हम चलाएंगे, और जो लोग कुछ नहीं कहे हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ भी चला देंगे. जो एपर्स अप एप करना चाहेंगे तो नॉन म्यूचुअल सेफ की थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा. अगले ब्लॉक में फनी खतोतीन में कोशिश करेंगे आपका गीत चलाने का. Marat kan zomaar zo zijn dat het niet lukt en dat het tussen 10 en 11 gaat worden. Maar koosjes, als we hem keringe, orabi keringe, dan gaat natuurlijk gaat het lukken. Toe jij niet toch? Mijn pierre is in alle medek dat we hamare. Pehla, aaje, jo. App kie hè, aaje, mujhe Rotterdam shahar ka bhaiya Johnny Kalicharan ji. तो जॉनी कालीचरण जी, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद. डंकीवेल आपके ऐप के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, ट्यून करने के लिए. एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर जो लाइव एंड डायरेक्ट पेश हो रहे हैं आप ही के शहर से, रोटरडम शहर से ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है उजाला रेडियो पर. एंजॉय योर वीकेंड. मैं देखता हूँ विशाल खेमाए का एक सुपर टूपर एक्शन बैठक हम पेश करने जा रहे हैं. और गीत का बोल, तेरी उम्र है 16 साल, काश

संजय योढ़ा की आवाज मेरे प्यारे जिनवालों, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या मूवी सॉन्ग मुकेश जी का आखिरी गानों में से ये था एक। और जब ये फिल्म रिलीज हुआ उसी साल मुकेश जी इस दुनिया को छोड़कर परलोक सिधार गए। और संजय ओढ़ा की आवाज तो मैसिव है, और इनकी आवाज में गाया हुआ ये नगमा भी बहुत खूबसूरत है। 020-363-0008 Mensen, als u gaat appen, moet u wel geduld hebben. Voor elke apper zal ik een liedje afdraaien. Maar het heeft totaal geen zin om te vragen wanneer mijn liedje komt, omdat ik het zelf nog niet eens weet. Doet ja niet toch? Wat ik wel kan zeggen is, als je nu gaat appen naar de studio, dan moet je wel lang wachten, maar dat kan misschien in het volgende blok nog passen. Dat weet ik niet. Anders wordt het tussen 10 en 11 gedraaid. Ik ben er tot 12 uur, dus het kan allemaal nog. Aapjinta nakere. No spang. Doe dat niet toch. We gaan naar Amstelveen. Mijn pjaar is in Amstelveen. Ik hoor Aapkoli chelte. Ja, Samdhinia, Hamar. सुशीला चंद्रिका सिंह जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और जब भी मौका मिलता है, मुझे मालूम है सुशीला जी को उजाला रेडियो पसंद है, मेरे प्रोग्राम को भी पसंद किए करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो सुशीला जी को हम कहेंगे बहुत बहुत बहुत डंकीवेल धन्यवाद, आप फिर चुन किए हुए हैं, दिल खुश हो गया। एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड। और प्रभत पंचू जी का गाया हुआ एक मोहम्मद रफी का जो मिशप है सुशीला जी के नाम एडम सल्फेन।

तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो, जान लो कि हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। रफी साहब जी का ये मैशअप प्रभट पंचू जी की आवाज। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सनम धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे हो रहे हैं 5 मिनट ओवर द क्लॉक 9:30 सरे 8:05 गुजर चुके हैं। सोशल मीडिया पर मेरे प्यारे सुनो वालों, आपको मालूम होना चाहिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उजाला रेडियो भी शामिल है। गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो ऑन सोशल मीडिया। वोटोंस फ्रेंड कनेक्ट मेटोंस, जो भी हम छापते हैं वहां आप आसानी से पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाएंगे, किसी को टैग कर पाओगे, डील कर सकते हैं, शेयर क्या क्या नहीं कर सकते हैं। एंड नेचुरली उजाला रेडियो का जो यूट्यूब चैनल है, जरा से एक झलक वहां पर भी आप जाकर देख लीजिएगा और अबोनेरिय ऑफ उजाला यूट्यूब चैनल। हम आपको ले चलेंगे अब आम्स्टरडैम से एकदम आरएनएम की ओर। आरएनएम वहां से आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम से शारदा, शारदा खनित फन आउटस्टैंडिंग फन हार वीकेंड फन हार साथ रख। और ऐप करने के लिए शारदा बहुत बहुत बहुत डांकेवेल धन्यवाद। सागर मलिक वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंदर, इनकी आवाज में गाया हुआ एक नगमा मैं शारदा के नाम करता हूं। आई एम

तौबा तुम्हारे ये इशारे, सागर मालिक जी की आवाज, मेरे प्यारे जिन वालों, हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में हमने आप तक पेश किया है नुल 20 3 0 0 0, जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से भी मैं एक गीत चलाऊं, एक लोकल सॉन्ग। मार्सब्रुक में रहते हैं लेकिन इस वक्त पेरिस में है, पेरिस द ब्यूटिफुल लव सिटी। पेरिस में है चित्रा जी और हिरेंद्र जी, और वहां भी जाकर चून किए हुए हैं, उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो दिल से थैंक यू लीवेल, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय पेरिस, वन ऑफ माय फेवरेट सिटी यूरोप के अंडर में। और हमने एक गीत तैयार करके रखा है, दैट इज फ्री स्टाइल फन सुरीनाम, एक बिंदास स्पाइसी, क्या कहते हैं, एक बिंदास स्पाइसी मिक्स, और मिलियाना जी की आवाज में पेश करने जा रहे हैं चित्रा जी और हिरेंद्र जी। एंजॉय, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड, एंड नटूरलक सैटरडे नाइट फीवर।

Miliana mere pyare se no alo med farmasi freestyle binda spicy mix inhone seva mein pesh kiya hai. This is you are mere pyare se no alo weekend hai. उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड या इनमें से चटक मटक बना है एंड एक वोट ओक हियर लेकर फरवेंट अलेन या एक कमनी तन एट टू और हम नमाइन लाकि बहुत स्पाइसी हो जाए हमारे मुहुआ में dat het gaat branden of dat ik er last van gaat krijgen. Dat ik hem op de mooiste baat die hem naar kerpijn. Maar het ruikt wel lekker masala. Kan echt lekker ruiken als dat goed geboeide is. Lekker hoor. Aur aaj itni khana hai mere pyare sunne walo. Pata nahi kya khaye kya nahi. Lekin ek baat hai, dat wil ik wel zeggen. Als er bara wordt gemaakt. Nee, als je rijst hebt gegeten, roti hebt gegeten, dal hebt gegeten. Met vlees en groenten, itiadi. De okere baat me kort daarna moet je niet met bara komen. Dat kan je niet meer eten. Bet waar ik dan val. Doe jij niet toch. Daarna ki ora aapko le chalenge, mere pyare sunne walo. Jahan par lieve Mieke bhi program se jore hue hai. तो दंकिवेल लिफ़ मिका जी आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर एंड सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एक हैव एन हील मूवी हियर फ्रॉम लकी सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स भी हमारे हॉलैंड के अंदर बेहतर मूवी सॉन्ग फन सोनू निगम इन्होंने फिर से गाए हैं मिका जी के नाम अट डन हाग खनीत फाइन वीकेंड एंड खनीत फाइन यू आर सैटरडे नाइट फीवर

लक्की सिंह की आवाज मेरे प्यारे सुनों लो, खूबसूरत गीत पेश हुआ है। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ। इस गीत के बाद हम ब्रेक की ओर पर चलेंगे, और वो भी 9 बजे का। ब्रेक के बाद हम आप सभी से फिर जरूर से जरूर फिर मिलेंगे। रिमेम्बर दिस इज यू आर लाइफ एंड आर आई QR के स्टूडियो रोटरडम से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, और मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे।

Jadun bin Raban and Papiman mere pyare jene walo ye Bhangra mix with a pharmacy beat machine mere pyare jene walo 12 minute to guzar chuke hain aur wo bhi 9 bajkar at this 12 minute over 9 aap hi ka man chaha aur favorite station Ujala Radio hai ye mere pyare jene walo weekend hai शनिवार है एनवार से इनमें से दी वर्क इस वक्त जो लोग काम पे हैं मैक नहीं आउट व्हाट फॉर वर्क ये डूट मैं आज यहाँ तो लाइस्टर बन स्टूर इवन एप्पी अलाद वेट कि आप सुन रहे हैं चुन किए हुए हैं एंड नतुलक दिल लगाकर काम करना एंड एन्जॉय यू आर एपर्स के नाम गीत चला रहा हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों और आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं दमुचे वेल दरफनायत खान की अप अगर आप ऐप करेंगे डन से तू सोविसो इन एट ब्लॉक ये तीन टोट एलिफ्यूर मादर इस नोक हेल फुल रूम्ड सोफल एपर्स हैं नहीं एक नहीं 020-363-0808 जहां से सुनीता और खुशी प्रोग्राम से जोड़े हुए हैं डंकी वेल सुनीता एंड खुशी खनीत फन यूली साथ रखावन खनीत फन यू आर खनीत फन सैटरडे नाइट फीवर द फॉर्मेशन म्यूजिक बैंड गुड वाइब्स आउट सुरीनाम मेट एन हेयरलक कुछ कुछ होता है मिक्स मिस्टर क्वाइकी एंड रोहित और गीत हम नाम करेंगे सुनीता और खुशी के नाम आई टर्न आउट

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, म्यूजिक बैंड द गुड वाइब्स हित हमारे प्रिय सूरीनाम देश में, या देश का होना चाहिए, है ना। कुछ कुछ होता है मिक्स क्वाइकी और रोहित। मैं सब उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं हसलख है, वो दिस वीकेंड दिस साधन खावंत और आपका मनचाहा और फेवरेट रेडियो उजाला रेडियो आपका साथ है। एंड ऑफ द साधन खावंत जब भी मैं हूं कोशिश करता हूं भरपूर आपका दिल बहलाने का। वी आर द फाइनेस्ट लोकल्स एंड वो है बहुत खाओ और मरी खाओ लात्र मिस्किन इन इट ब्लॉक के फन 3-11 कुछ पुराने लोकल्स हो जाए। यूई 12 फन नदीम खान फन वेम दमरी शहीद वगैरह वगैरह मार हुएल वेम दमरी का एक नगमा हमने तैयार करके रखा या एक सखम एक दिंग नाम दी खा एक में तेंद्रा है और इसे हम नाम करेंगे रोटरडम स्कीनाम में जो रहते हैं रोहिणी कल्लू जी। तो रोहिणी कल्लू जी एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड और चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। रोहिणी जी एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और एंजॉय खास करके रोहिणी जी ये नगमा विम द लेजेंड विम दमरी जी का गाया हुआ जो आपके नाम करता हूँ।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनो वालों, द लेजेंड विम दमरी जी की आवाज, रंगत तेरी सूरत की किसी में नहीं नहीं, ब्यूटीफुल सॉन्ग हियर ऑन यू आर मेरे प्यारे सुनो वालों। 4 मिनट बाकी है सरे 9 बजने में, 4 मिनट फोर ओ क्लॉक फन हालफ तीन एपर्स का नाम गीत चला रहा हूं और अब की बार गीत मिस्टर ब्लैक का गाया हुआ मैंने फरमासी एक्सप्रेस। हम नाम करेंगे फोर मै प्रिय स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी अयत सुतमेर एंड हंस स्वागरी जी बधाइया हो ऑन सक्लाइन सोन लेफी इस यार एंड दैट वाज गिस्टर 4 jaar सो हाई वर्ड ग्रोथ बधाइया शुभकामना। Jammer dat ik jou gisteren niet heb gezien, Zwaak. Maar geniet van You Are. En ik heb een mooie twist. Misschien kan je dansen. Ik weet niet of Levi bij jou is. Maar lekker dansen met hem. Lekker twist. Doe je aan het toch? Enjoy your weekend. Enjoy your Saturday. Zwaak, Hans, Lajman Singji. And thanks for your always support.

Ja, ja, ja, het swingde helemaal uit de pan. Meripje is er nu al, hoor. Lekker twist en we twist en we twist en we twist. Ik ben hier in de studio met twist karat karat karat. Moet je malum, hè? To studio ka jo kursi tha. वो उठ के ना नाचत रहा एगो एगो रहा एगो हम नाम ना बोला स्टूडियो में आवे तो बैठ बैठ के नाचे ऐसे ऐसे जाने हिलावे तो कुर्सिया पे तो हिलावत हिलावत ऐसे मोरे अरे भैया थराओ के नाच तनी दहिया भर हिलाओ ना करी से कुर्सी के जो एक पौट है टूट गए और गिरल भराम Ja, wie niet wil luisteren, je weet toch verder. Mere pyare suno, main agle geet ki aur aapko le chalengi. Aur le chalengi aapko Den Helder ki aur, jahan Ilse Ramdial bhi program se jude hue hain. To Ilse ji, thank you well, aapke app ke liye, tune karne ke liye. Enjoy your Saturday. बेहद खुशी है हम कि आप ही चुन किए हुए हैं और आप कैब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नगमा हमने जो तैयार करके रखा है निजाम वागिद हुसैन गाकर सुनाएंगे दिल से रामदयाल के नाम अदन हेल्दर

मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। निजाम वागित हुसैन की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत गीत, सोनू निगम का एक नगमा इन्होंने गाकर सुनाए हैं अपनी रंग और ढंग में। रिमेंबर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनने वालों, और 10 मिनट गुजर चुके हैं सरे 9:03 ओवर द क्लॉक फाना, हालफ तीन हो चला। लाइफ एंड आर यू आर के स्टूडियो रोटरडम से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। वहां नार बेल्जिया, बेल्जिया की ओर शाक विल्ड प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। एंड लाइव सर्फिया डे अबी प्लस शाक, दंकीवेल फॉर ये एपिया। वट फेन दैट यू ओक कान गनीते फान उजाला रेडियो इन बेल्जिया। एंड वट लुक दैट यू लुइसट नार उजाला रेडियो। एक है पलीचे क्लार स्टान शाक, Jacques Wilde uit België. Een mooie Bollywood blues voor Jacques. En dankjewel en nogmaals hartstikke dank voor je appje.

दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जैसी स्टाइल ब्लूज फनोइड कोक स्टूडियो हमने आप तक पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। एनव खान आराम सदम जहां पर कैटरीना प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कैटरीना एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर एन कैटरीना। मैंने गीत को तैयार करके रखा है द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तो सैन की आवाज में एंड इज नॉट टू लुक फॉर यू कैटरीना। आई एम सदम, एंजॉय।

दिल है तुम्हारा, ये था उमरवागी तुसैन की आवाज मेरे प्यारे सुनोलो। और हम बढ़ रहे हैं अब की बार जो गीत की ओर, लामत खुद से है। मैं दो नगमाएं पेश करूंगा किसी के लिए और इन दोनों नगमाओं के बाद हम बढ़ चलेंगे 10 बजे की इश्तिहारे की ओर। और इश्तिहारों के बाद नटूलक आप सभी से फिर हम मिलेंगे लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। आइलिन जो हार्लेम में रहते हैं, आइलिन डंकीवेल आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं। और हमने गीत को तैयार कर रखा है, दो पुराने नगमाएं, खूबसूरत नगमाएं, प्रदीप प्रहलाद सिंह जी का गाया हुआ मैट इंद्रा रामचरण, आइलिन के नाम आइट हार्लेम। डंकीवेल खनित फाइए वीकेंड।

विनो राठौर में हम सफर मेरे प्यारे सुनने वालों। अनहेर लक खावा आव और अभी कुछ गीतों के बाद हम आपको फिर एक डबल खावा आवाज सुनाने वाले हैं। फिलहाल तो हम घड़ी की तरफ देख रहे हैं तो अतिस फिर 3:03 मेरे प्यारे सुनने वालों 10:14 गुजर चुके हैं। ये है आपी का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो अतिस 7:10 मेरे प्यारे सुनने वालों। हफ्ते का सबसे खूबसूरत दिन है आज शनिवार और शनिवार का जब दिन होते हैं तो सभी लोग खुश में रहते हैं, मगन में रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपना वीकेंड। मार नतुलक फरखीत व द वर्कर्स नीत जो लोग वीकेंड दिन्स में हैं और नाख दिन्स में हैं, हमारे भाई और बहनों अभी को हम याद करते हैं और मुझे मालूम है कि बड़े तादाद में आप लोग भी सुन रहे हैं प्रोग्राम। तो दिल लगाकर काम करना और एंजॉय, यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। अम्स्टरडम की ओर एक आदमी जो कभी थकता नहीं कहते हैं कि मानिक बैन मुंह टोनी इसरी एट अल्मेरा। टोनी डंकीवेल हुडानोग, आपने ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए और हमेशा आप सपोर्ट करते हैं। सुसोलो भी बरादा, मैंने गीत को तैयार कर रखा, मैं देखता हूं दैट इज डायमंड्स 2000 और आपके लिए गाने वाले हैं लकी सिंह। ये गीत जो है, ये नगमा जो है, हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में टोनी इसरी के नाम अटल मेरा।

या डायमंड्स 2000 मेरे प्यारे सुनने वालों, लकी सिंह की आवाज, महबूबा महबूबा द ग्रेट मूवी शोले का जो नगमा है, इन्होंने अपनी आवाज में फिर गाए हैं, सजाए हैं अपनी ही रंग और ढंग में, और आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। 9 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 10 बजने में नहीं, हमने तो फूड क्लॉक फन हाल्फ एल्फ हो चला है। 12 बजे रात्रि तक आपका साथ हम देंगे मेरे प्यारे सिनेमा लोग, एंड वहां नतुलक आखिरी घंटा में फन 11 to 12 मित्र सोल्स, तू जाने तो हमेशा की तरह मरातिस खीन रीखल है अतिस खी वेट। और अगर आप देर से ऐप करेंगे और आप एक धमाकेदार गीत सुनना चाहेंगे 11 बजे के बाद, लाचत मवीत एना कहेंगे हम लोग कुछ कर सकेला, तू जाने दो। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे ओवरसीज, पैसिफिक ओशन के उस पार, सॉरी अटलांटिक ओशन के उस पार, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां हमेशा सस्टेलनोइट टूर, हर एक वीकेंड हर एक शनिवार जब भी मैं हूं साथ देते हैं सुनीता जी और अजय, एकदम वहां दूर टेक्सस में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो सुनीता और अजय और जितने लोग भी आप लोगों के साथ हैं, थैंक यू लिवेल, दिल की गहराइयों से आप सभी को हम धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू वेल, ट्यून करने के लिए, ऐप करने के लिए, हियर ऑन यू आर, मेरी ये प्रोग्राम सुनने के लिए और ये कश उठाने के लिए, ऐप करने के लिए। गजलिगस्त बैंड फन नीदरलैंड सा ब्रोसो मेट कारिन बैटली, गीत हमने तैयार करके रखा है, एकदम खरब पे है अजय और सुनीता जी और आप सभी के नाम वहां दूर टेक्सस में। एंजॉय, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर एंड सुसोलोबी फारतन।

जो फरमाती साबरसो और कारिन बैठली जी की आवाज हीरो निवार मेरे प्यारे सिनवालो एक गीत के बाद मेरे प्यारे सिनवालो एक पुराने डबल हम आप तक पेश करेंगे और किसी के लिए भी हम पेश करेंगे वो दो नगमाएं आई तो टावर डोज उसके लिए हम आपको ले चलेंगे वे बैक मेरे प्यारे सिनवालो नई नी तीन यार तरुख नी 20 यार तरुख मनोज लांगर उनका दो नगमाएं सुना चुके हैं एंड वी स्कर्प इस वेट वी एक बदूल सत्या जी अम्सरडम में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आपके ऐप के लिए बहुत बहुत डंकीवेल धन्यवाद सत्या जी बेहद खुशी है हम कि आप भी चून किए हुए हैं हियर ऑन यू आर उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर उमर एंड स्क्वाट को हमने तैयार करके रखा है ब्यूटीफुल सोल नगमा बाय द लेजेंड सत्या जी के नाम अहित अम्सरडम एंजॉय

The King of Indie Pop, मेरे प्यारे सिनवालो, The Living Legend उमर वागितुसेन की आवाज, एंड इट वाज उमर एंड स्पॉट, ब्यूटीफुल सोल मिक्स जो आप तक हमने पेश किया है, हियर ऑन यू आर। मैं से एक और डबल चलावे, लेकिन ik heb gemerkt dat ik het niet goed heb opgeslagen. Orkaren ye hai ki do title hai, lekin dono nagmae selfde hai. To matlab ye ki ik heb ergens niet goed gedaan. To hum double nahi chalayenge, ek legend hai. Unka sirf ek geet hum chalayenge. Do hum chala chuke hai filhaal. Maar ik kon een dubbel weer doen van hem. Jammer, het is niet gelukt. Or, het na snel praamke dooraan hem niet. Is hij repareer karpijnke. Dan gaan we dat ook niet doen. We gaan naar Almere. Almere ki ora aapko le chalenge, mere pyare se nu alo. Jahan par Sita. Praam se jore hue hai. Sita, dankjewel aapke app ke liye. Aapne chun kie hue. एक प्यार भरा नगमा, ब्यूटीफुल सॉन्ग तैयार करके रखा है, तो सीता के नाम करेंगे ऐताल मेरा। आप भरपूर एंजॉय करें इस गीत को, यू आर को, सैटरडे नाइट फीवर को, और बहुत बहुत धन्यवाद, डंकी वेल आपके ऐप के लिए।

प्राण भरी ये घटाएं राग मिलन के सुनाए, तेरा मेरा साथ है और हाथों में हाथ है, और फिर देख तो ये जमा कितना प्यारा प्यारा। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, लता जी और मन्ना दा का ओरिजिनल सॉन्ग, प्रदीप और प्रदीप भला सिंह जी और इंदिरा रामचरण जी की आवाजें। मेरे प्यारे सुनो, रिमेंबर दिस इज यू आर सैटरडे नाइट फीवर, आप सुन रहे हैं और एपर्स के नाम गीत अभी तक हम चला रहे हैं। रात्रि में 12 बजे तक ये प्रोग्राम सेवा में पेश किया जाएगा और हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर, जिसे हम नाम करेंगे न्यू खैन में जो रहते हैं धीरज। धीरज डंकीवेल आपके एप के लिए चून करने के लिए फेंड चौका फसे मैन ऑफ यू आर उजाला रेडियो धीरज। नगमा जो हमने तैयार करके रखा है, क्रिस गीत गाएंगे, मोई सॉन्ग धीरज के नाम अत न्यू खैन। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर एंड एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर धीरज।

मैं यहाँ हूँ वहाँ और जिंदगी है यहाँ। क्रिस की आवाज में मेरे प्यारे सुनवालों, गीत आप तक हमने पेश किया है। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जाएंगे मेरे प्यारे सुनवाला, अभी एक धमाकेदार बैठक रिमिक्स। फन हीरा ब्रदर्स विशाल हीरा गीत गाएंगे हमारे रनिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे प्यारे सुनोलों, इस गीत के बाद हम बढ़ चलेंगे ब्रेक की ओर, और वो भी 11 बजे का। 11 बजे के बाद एक घंटे और आप सभी के सेवा में हम रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, और उस आखिरी घंटे में इन प्रिंसिप खाओ अली मसूल सराय मार मुख्त सैन चिन एप ए चलता नगमा हो रहा दन मुझे ऐप अनार 020-363-0008। आप ऐप नहीं करेंगे तो बस हम नगमा चलाएंगे अली मसूल्स, और ये नगमा जो है विशाल हीरा का मफराव एंड मनेर बिहारी जी अजरा। थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर, और एंजॉय दिस सॉन्ग।

Robbie Chiavas mere piare sinualo. From the album Soul to Salute. तेरी बाहों में घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सिनवालों इट इज ऑलमोस्ट 12 मिनट ओवर द क्लॉक फ्रॉम 11 11 बजकर 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनवालों उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं आप सुन रहे हैं सैटरडे नाइट फीवर पांच घंटे का ये प्रोग्राम का आखिरी घंटे में मान पड़े हैं क्योंकि 12 बजे तक आपका हम साथ देंगे ये मख नोग स्टेज एप मेरे प्यारे सुनो वालो 020-363-0808 अगर आप चाहते कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं प्रभा जी ने ऐप किए हैं प्रभा जी एटम सदाम सेंट्रम तो प्रभा जी जब भी मौका मिलता है आपको आप चुन की ये करते हैं वैसे तो आप हमेशा कहते हैं कि आप 24 घंटे 7 दिन लगातार उजाला रेडियो पर चुन की ये करते हैं अगर ये सच है तो बस आपका पांव छूना चाहिए बेहद खुशी है हम कि आप इतनी सपोर्ट करते हैं सभी अमरूपर्स को हियर ऑन यू आर और उजाला रेडियो को और आप आज भी देखो ना इतनी रात गए हैं चून किए हुए आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम के साथ कुछ देर से आज आपने ऐप किए हैं लेकिन तत्माक नहीं आए देर से या लीफर देर से Dan helemaal niet, toch? Once again, Sabroso और Karin Betali को हमने प्लेस में सजा रखा है और ये नगमा प्रभाजी आपके नाम करूंगा प्रभाजी हमसे नाम सिंद्रम गीत आपके नाम

भाई थली मेरे प्यारे सुनने वालों, और आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। नवीद खान जी की आवाज और ये गीत जो हम पेश करने जाएंगे, मोहब्बत की वादे, धीरज के नाम पेश करता हूं। थैंक यू ऑल धीरज, एंजॉय दिस सॉन्ग। नवीद खान जी की आवाज़।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत ही खूबसूरत गीत जो पेश हुआ है प्रोग्राम में। और एक मोटिफ, क्या एक मोटिफ साक लही ना तू वांट टू कीप अ क्लीन क्लीन क्लीन क्लीन इशू उम्मीद इशू इस वेख तू जाने हैं प्रोग्राम लाइव बनाएला और लाइव स्टूडियो से कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो सकता है। कान नटुलक टेक्निक सेन मारत कानूक सेन दत एक दत क्रिएट हार्ट लग गया ईव हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। और मैं अगले गीत की ओर बढ़ चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड दैट इज फोर मैन यारों का यार डैनी लक्ष्मण सिंह जी और हमारे प्रिय भी अमीना जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो डैनी और अमीना जी अवित खौड़ा डंक्यूल वाल चुन करने के लिए मैंने गीत को तैयार करके रखा है मोइल ऑफ सॉन्ग होर। चलो मान लीजिए जाए कि डैनी जी गा रहे हैं अमीना जी के लिए, क्यों क्या ख्याल है? डंक्यूल वाल एंजॉय ओली साथ रखावन एंड फैन की आप दोनों ने चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। शिखर कुमार का ये नगमा डैनी लक्ष्मण सिंह जी और अमीना जी के लिए एट खौड़ा।

ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो हेलो। हाँ, पहली बार एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर बोली, हाँ रे हाँ। किशोर कुमार का ये नगमा मेरे प्यारे सुनो हेलो, शेखर कुमार की आवाज, मेड फरमासी दांसा आप तक हमने पेश किया है और 5 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनो हेलो, वो भी 11:30 कर इट इज 5 मिनट ओवर क्लॉक फन 11:30। ले चलते हैं आपको अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनो हेलो, जिसे हम नाम करेंगे और कहां कहां उजाला रेडियो लोग सुन रहे हैं, हील माला ना अंदर कान फंड वीरल हवाई। मेरे प्यारे जनोलो, हवाई से ऐप आए हैं सांद्रा और विजय झरप, जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं हवाई। हवाई में एंजॉय कर रहे हैं, उजाला रेडियो के साथ मजा ले रहे हैं और सांद्रा और विजय को, सांद्रा और विजय झरप जी को हम कहेंगे डंक यू वेल कि इतनी दूर जाकर भी उजाला रेडियो पर चून किए हुए हैं, बेहद खुशी है हम। एंड एक नगमा हमने तैयार करके रखा है सांद्रा जी और विजय झरप जी के लिए, रंजय जी की आवाज ये नगमा, एंड एंजॉय हवाई। थैंक यू आपके लिए, दिल आप दोनों ने खुश कर दिया है।

कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, और बिन तेरे कुछ नहीं है, बाहों का सहारा दे दे, जीने का बहाना दे दे। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, उदित नारायण अलका याग्निक का ये नगमा, रंजय जी की आवाज, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे प्यारे सुनने वालों, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकल्स हमेशा हियर ऑन यूआर सैटरडे नाइट फीवर में। जब भी मौका मिलेगा इस तरह का प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के मनोरंजन के वास्ते, आपका दिल बहलाने के लिए। लेकिन जब भी मौका मिलता है हाजिर रहता हूँ और कोशिश करता हूँ आपका दिल बहलाने का आवेद बेहतरीन बेहतरीन लोकल्स के साथ, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो। और आप अपने भरे तादाद में भी साथ दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दूर दूर जाकर भी आप उजाला रेडियो को अपने दिलों में रखते हैं, साथ लिए जा रहे हैं और चून किए करते हैं। वेल, इतना प्यार तो यकीन मानिए उतना ही दुगना प्यार आप सभी से भी हम करते हैं, क्योंकि आपका प्यार ही है जो हमें जोश देता है प्रोग्राम सजाने में बनाने में आप सभी के लिए। आप साथ नहीं देंगे तो ये भी मेरा ये प्रोग्राम किस काम का। वहां ना सही बनेंगे मेरे प्यारे, हवाई से फिर वापस हॉलैंड हमारे लिस्ट पर आखिरी नाम है मेरे प्यारे सिनेमा वालों, लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण जी, इट्स इवनिंग, आपके नाम गीत हम चलाएंगे। और लक्ष्मण जी हमेशा साथ देते हैं, लक्ष्मी जी भी साथ दे रहे थे, लेकिन आजकल वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में जरूर है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी एक गीत हमने तैयार करके रखा, एक कैनली चेहरे मालनी, एक बैन प्यूरो टिटल अफगान, लेकिन ये नगमा लक्ष्मण जी आपके नाम करता हूँ। एंजॉय योर वीकेंड और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, पल eigenlijk had ik hiermee moeten eindigen. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Pal rahena kal, jo bhi. मेरे प्यारे सुनो वालों, वक्त आ गया है कि आपसे आ गया, मुझे लेना है 5 घंटे लगातार आपका सेवा हम करने चले आए हैं और किया है भरपूर आपका सेवा, और आपने भी बहुत ही भरपूर मेरा साथ दिए हैं। अब आखिरी गीत हम पेश करेंगे, लेकिन आखिरी गीत चलाने से पहले आपको भी हम बता दें कि आप सभी को तहदिल से धन्यवाद हम कहते हैं, थैंक यू वेल, शुक्रिया साथ देने के लिए। आज आप सभी ने साथ दिए हैं इसलिए कि आज ये प्रोग्राम भी बहुत खूबसूरत बना सके हैं हम। आज जुदा हम हो रहे हैं, और जुदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगले बुधवार, जो इस महीने का आखिरी है, आप सभी से फिर मिलने के लिए। Want ik ben er nog op de laatste dag van september, और वो भी 30 september को, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम Back to the Future। आज ये साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल, शुक्रिया मेरे प्यारे सुनने वालों। एक आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं आप सभी के लिए मेरी तरफ से, और नॉर्मल साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार, और खुदा हाफिज, टेक केयर, और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

0: बस। पूछा है मैंने इनका पता,
1: अरे
0: तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमखारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से।

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरिया,
1: जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा।

0: तुम
1: होश हुए गुम देखा जो मुखड़ा तुम्हारा
0: होश करो तुम
1: होश हुए गुम देखा जो मुखड़ा तुम्हारा आशिकों की सुन
0: छोड़ मेरी धुन ऐसे ही कर ले
1: गुजारा चोरिया
0: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

0: मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा जा,
0: मिलकर बना आ जा। मैंने कहा आ,
1: मैंने कहा ना,
0: मैंने सुना आ आ आ आ चोरी आ आ आ चोरी आ आ आ चोरिया।
1: जा छोरा जा छोरा जा छोरा जा छोरा जा छोरा जा।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।